ये चैनल है रागम डीटीएच, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा, संत कबीर की इस रचना का आनंद लीजिए अनुरिता राय के स्वर में।

हर दिन हर पल भारतीय संगीत का चैनल रागम डीटीएच। बेला सावेर के स्वर में सुनते हैं दरिया साहब की भक्ति रचना आदि अंत मेरा है राम।

ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत, ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी।

0: पुरुषोत्तम माम पालया सावेरी रागा रूप कटाड़ा
1: दी पशुपति नाउ प्रेजेंट पुरुषोत्तम माम पालया सेटू सावेरी रागा रूप कटाड़ा।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग ललित पर ख्याल सुनवाएंगे. कलाकार है निहार रंजन बंदोपाध्याय. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तिमिर राय चौधरी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सनातन गोस्वामी. तो लीजिए प्रस्तुत है राग ललित पर ख्याल. कलाकार है निहार रंजन बंदोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनीटाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. लिसन फर्स्ट टू अ ख्याल इन द राग ललित. Our artist is Nihar Ranjan Bandyopadhyay. Accompanying him on the tabla is Timir Roy Chaudhary and on the harmonium is Sanatan Goswami. Listen now to Khayal in the Rag Lalit. Our artist Nihar Ranjan Bandyopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग ललित पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे निहार रंजन बंदोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तिमिर राय चौधरी और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे सनातन गोस्वामी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे राग परमेश्वरी पर गिटार वादन। कलाकार है सपन मजुमदार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सलील महालनोबिस। तो लीजिए प्रस्तुत है राग परमेश्वरी पर गिटार वादन। कलाकार है सपन मजुमदार।
1: You were listening to a khayal in the rag Lalit. Our artist was Nihar Ranjan Bandyopadhyay. Accompanying him on the tabla was Timir Roy Chaudhary and on the harmonium was Sanatan Goswami. This is Ragam 24/7 on DDH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a guitar recital. Listen to a guitar recital in the rag Parameshwari. Our artist is Swapan Majumdar. Accompanying our artist on the tabla is Sholil Mahalanobish. Listen now to the guitar in the rag Parameshwari. Our artist, Swapan Majumdar.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग परमेश्वरी पर गिटार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सपन मजुमदार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सलील महालनोबिस। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ गिटार रिसाइटल इन द राग परमेश्वरी। आवर आर्टिस्ट वाज स्वपन मजुमदार। Accompanying our artist on the tabla was Sholil Mahalanobis. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में. आप सभी का स्वागत. सुनते हैं शास्त्रीय गायन. प्रारंभ सुनते हैं विदुषी लक्ष्मीबाई जाधव द्वारा प्रस्तुत राग बहार. विलंबित तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है सब बहार आए, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है बसंत की धूम मची. सात संगत सारंगी ए के कुंटे, तबला डी के जोशी. तो आइए सुनते हैं राग बहार, कलाकार विदुषी लक्ष्मीबाई जाधव.

श्रोताओं, अभी आपने सुना विदुषी लक्ष्मीबाई जाधव द्वारा प्रस्तुत राग बहार। आपके साथ सारंगी पर संगति कर रहे थे ए.के. कुंटे और तबले पर संगति कर रहे थे डी.के. जोशी। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं सरदारीबाई कारदगेकर द्वारा प्रस्तुत राग पुरिया। विलंबित त्रिताल में निबद्ध रचना के बोल हैं आज पलन आए।

सरदारी बाई कारदगेकर द्वारा प्रस्तुत राग पुरिया आप सुन रहे थे। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं विदुषी गंगूबाई हंगल द्वारा प्रस्तुत राग अडाणा। विलंबित तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है जो तेरी रजा जो चाहे। राजसंगत हारमोनियम अप्पा जलगांवकर, तबला शेषगिरी हंगल। तो आइए सुनते हैं विदुषी गंगूबाई हंगल द्वारा प्रस्तुत राग अडाणा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना विदुषी गंगूबाई हंगल द्वारा प्रस्तुत राग डाणा। आपके साथ हारमोनियम पर संगति कर रहे थे अप्पा जलगांवकर, तबले पर थे शेषगिरी हंगल। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 27 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग बैराई. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं काज मोरे बन आवे और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं नैना तिहारे मन भावे. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal recital by Ustad Ghulam Sadiq Khan. He begins the recital with a rendition in Rag Bairagi. The Vilambit Khayal is set to Ektal. The words are Kaj Mure Ban Aave. The Drut is set to Tital. The words are Naina Tihare Man Bhave. He is accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the harmonium by Sajjad Ahmed.

0: अभी आप उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग बैरागी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खां ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने। और लीजिए अब सुनिए इनका गाया राग मेघ। मध्य लय झपताल में निबद्ध है, बोल हैं गर्जे घटा घन और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं कासे न कहिए सजनी। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ रेंडिशन इन राग बैरागी बाय उस्ताद गुलाम सादिक खान। इट वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय नवाब अली खान एंड ऑन द हारमोनियम बाय सज्जाद अहमद। ही नाउ प्रेजेंट्स राग मेघ। द मीडियम टेम्पो और मदले इज सेट टू झपताल। द वर्ड्स आर गर्जे घटा घन एंड द फास्ट टेम्पो और द्रुत लय इज सेट टू तीन ताल। द वर्ड्स आर कासे न कहिए सजनी। He is accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the harmonium by Sajjad Ahmed.

0: अभी आप उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग मेघ सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खां ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ परफॉर्मेंस इन राग मेघ बाय उस्ताद गुलाम सादिक खां। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय नवाब अली खां एंड ऑन द हारमोनियम बाय सज्जाद अहमद। दिस प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कलाकार है सीमा रानड़े। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग रागेश्री, सुनते हैं विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है आलीरी पलकन लागी, और द्रुत अध्यात्रिताल में निबद्ध रचना के बोल है लगन लागी तुम्हारे दर सकी। सात संगत तबला माधो मोड़क, हारमोनियम शुभांगी भवसार,

और अब सुनते हैं सीमा रानड़े द्वारा प्रस्तुत राग रामकली, विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोले माँ छरिया मेहंदी, द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोले सखीरी मेरे मन की। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं माधव मोड़ा, हारमोनियम पर शुभांगी भवसार। तो आइए सुनते हैं राग रामकली, कलाकार सीमा रानड़े।

श्रोताओ, अभी आपने सुना सीमा रानड़े द्वारा प्रस्तुत राग रामकली। आपके साथ तबले पर थे माधो मुण, हारमोनियम पर शुभांगी भवसार। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पर हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग केदार पर सितार वादन. कलाकार हैं दीपंकर दत्ता. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं नारू गोपाल पात्रा. तो लीजिए प्रस्तुत है राग केदार पर सितार वादन. कलाकार हैं दीपंकर दत्ता.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present a Hindustani instrumental recital followed by a Hindustani vocal recital. Listen first to a sitar recital in the rag Kedar. Our artist is Dipankar Dotto. Accompanying our artist on the tabla is Naru Gopal Patro. Listen now to the sitar in the rag Kedar. Our artist Dipankar Dotto.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग केदार पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे दीपंकर दत्ता। आपके साथ तबले पर थे नाडू गोपाल पात्रा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए सर्वप्रथम प्रस्तुत है राग मिश्र पीलू ठुमरी तदुपरांत पहाड़ी दादरा। कलाकार हैं दूला देवनाथ। आपके साथ तबले पर हैं तुषार दत्ता और हारमोनियम पर हैं कमलाक्षा मुखोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम मिश्र पीलू ठुमरी तदुपरांत पहाड़ी दादरा। कलाकार हैं दूला देवनाथ।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन द राग केदार। आवर आर्टिस्ट वॉज दीपंकर दत्तो। Accompanying our artist on the tabla was Naru Gopal Patro. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a Hindustani vocal recital. Listen to a Mishra Pilu Thumri followed by Pahari Dadra. Our artist, Dola Debnath. Accompanying our artist on the tabla is Tushar Dotto and on the harmonium is Komalakho Mukhopadhyay. Listen now to Mishra Pilu Thumri followed by Pahari Dadra, our artist Dola Debnath.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सर्वप्रथम मिश्र पीलू ठुमरी तदुपरांत पहाड़ी दादरा सुन रहे थे। कलाकार थी दूला देवनाथ, आपके साथ तबले पर थे तुषार दत्ता और हारमोनियम पर थे कमलाक्षम मुखोपाध्याय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a Mishra Pilu Thumri followed by Pahari Dadra. Our artist was Dola Debnath. Accompanying our artist on the tabla was Tushar Dotto and on the harmonium was Komalakho Mukhopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंडित तरुण भट्टाचार्य का संतूर वादन राग किरवानी. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित शुभंकर बंदोपाध्याय. राग किरवानी संतूर पर कलाकार पंडित तरुण भट्टाचार्य.
2: This is Ragam, 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening, we present a Hindustani instrumental recital. Listen to a Santoor recital in Raag Kirwani. Our artist this evening, Pandit Tarun Bhattacharya.

0: अन्य घरानों की झलक भी मिलती है। एक बहुमुखी कलाकार और संगीतकार के रूप में कुमार मलडोर ख्याल, ठुमरी, हिंदी भजन, मराठी अभंग, कन्नड़ दास साहित्य, कन्नड़ वचन साहित्य और कई अन्य संगीत परंपराओं का अन्वेषण करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार कुमार ने देश भर के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति दी है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री कुमार मरडूर, अवार्डेड द उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार बाय द संगीत नाटक अकेडमी। कुमार मरडूर stands out as a gifted Hindustani classical vocalist. His grounding in the Kirana and Gwalior gharanas, along with training under his father, Pandit Somnath Mardur, has led to a unique gaiki that weaves in elements from Jaipur Atrauli and other gharanas, built on deep riyas and inspiration from legendary maestros. A multifaceted performer and composer, Kumar explores khayal, thumri, Hindi bhajans, Marathi Abhangs, Kannada Dasa Sahitya, Kannada Vachana Sahitya and many other traditions. An A-grade artist of Akashwani and Doordarshan, Kumar has performed throughout the country in various prestigious concerts.
0: Aaj ke is karyakram mein aapke saath tabla par Pandit Satlingappa Desai Kallur aur harmonium par Sri Panchakshari Hiremath saath de rahe hain. Shri Kumar Mardur apne karyakram ka prarambh राग छायानट से कर रहे हैं। विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालनिया, द्रुत तीन ताल तराना।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री पंचाक्षरी हिरेमठ। श्री कुमार मरडूर विल बिगिन हिज वोकल रिसाइटल विद राग छायानट। विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालिनिया, फॉलोड बाय तराना इन द्रुत तीन ताल।

0: अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मल्डूर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्वरी। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती करता।
1: यू जस्ट हर्ड राग छायानट। श्री कुमार मल्डूर विल नाउ प्रेजेंट राग बागेश्वरी। विलंबित एकताल सखी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती करता।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मरडूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was राग बागेश्वरी।

0: With that, we come to the end of tonight's Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
1: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.
0: This program was earlier recorded at Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार. कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार. भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए. विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है.

अभी आप सुन रहे थे विदुषी जया विश्वास द्वारा प्रस्तुत सितार पर राग नट भैरव। आपके साथ तबले पर थे रघुराज तुलसी बाग वाले। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सरोद वादन। कलाकार है झरीन दारूवाला। आपने सरोद पर प्रस्तुत किया राग भटियार सुनते हैं। आपके साथ तबले पर है विभव नागेशकर।

अभी आप सुन रहे थे सरोद वादन, कलाकार विदुषी झरीन दारूवाला। आपके साथ तबले पर थे विभव नागेशकर। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम 24/7 हर पल हर समय आपके साथ।

अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार द्विवेदी का गाया राग भटियार में ध्रुपद। अब प्रस्तुत है इन्हीं का गाया राग दरबारी में ध्रुपद। पखावज पर संगत कर रहे हैं पंडित राजकुमार झा।

अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार द्विवेदी का गाया राग दरबारी में ध्रुपद। विनोद कुमार द्विवेदी अपने कार्यक्रम का समापन राग किरवानी में गाए ध्रुपद से कर रहे हैं। पखावज पर संगत कर रहे हैं पंडित राजकुमार झा।

अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार द्विवेदी का गाया राग किरवानी में ध्रुपद। पखावज पर संगत कर रहे थे पंडित राजकुमार झा। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सहयोग से।

0: This is Ragam 24/7 DTH in Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित एल के पंडित का गाया राग विभास. विलंबित ख्याल तिलवा ताल में निबद्ध है. बोल हैं मोहन जागो और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं आज मोरे घर आए. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाटने और सारंगी पर अमीर खाने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित एल के पंडित. He begins his recital with a performance in Raag Vibhas. The Vilambit Khayal is set to Tilwada Taal. The words are Mohan Jago. The Drut Khayal is set to Teen Taal and the words are Aaj Mure Ghar Aaye. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the sarangi by Amir Khan.

0: गाया राग विभास सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर अमीर खान ने। और लीजिए अब सुनिए इनका गाया राग शुद्ध सारंग। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं नाम निरंजन। और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं तू है निराकार। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर अमीर खान ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग विभास परफॉर्म बाय पंडित एल पंडित। He was accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the sarangi by Amir Khan. He now presents a rendition in Raag Shuddh Sarang. The Vilambit Khayal is set to Ek Taal and the words are Naam Niranjan. The Drut Khayal is set to Teen Taal. The words are Tu Hai Nirakar.

0: अभी आप पंडित एलके पंडित का गाया राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर अमीर खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: That was Pandit LK Pandit performing Raag Shuddh Sarang. He was accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the sarangi by Amir Khan. This program was presented by All India Radio, Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का DTH चैनल रागम. आइए सुने भक्ति संगीत. हर रूप में छिपे हैं. आइए अब सुने RP शुक्ला की रचना विवेक प्रकाश की आवाज में.